जाए, ना उमरे न होवे सोग, देंदा रहे न चुके भोग, गोणे होहर नाहीं कोए, ना को होवा ना को होए, जे वड़े आप ते वड़ देरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम वसारे ते कम जात, नानक नामे बास नारा गुरु जी महला चौथा, हर के जान सत गुर सतपुरखा, बिनों करों गुर पास, हम कीरे किरम सत गुर सरनाई, कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुर दे मोको राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत अमरी रहरास रहाओ, हर जन गे वड भाव वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से मिल संगत गुण परगास, जैन हर हर सुनाम न पाया ते पागण जम पास, जो सतगुर संसंग नहीं आए, त्रिग जीवे त्रि जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लखास, तन तन सत्संग तरस पाया, मिल जन नानक नाम परगास, राह गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवदम जन हर जियो परिया, सहल पत्थर में जंत उपाय, ताका रिजका के कर तरिया, मेरे माधो जी सात सन मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काश हरिया रहाओ, जनन बिता लो सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, से सिर संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया, उड़े उड़ा वे सकोसा, ते पासे भरे सरिया, तेन कौन खिलावे कौन जगावे, मन में सिमरन करिया, सबन दान दा सस दान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाई है, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक्याओ अंकार, सतगुर प्रसाद, सो पुरख नजनार पुनर्ण गमा गम पारा, सब त्यावें सब त्यावें तोजी, हर सच्चे सिजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर दया वो संत हो जी, सब दूब सार नहारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू गड़ गड़ अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरुष माणा, एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज वडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आ बखाणा, जो सेवै तो जी, जन नानक तिन करबाणा, हर ते आवे तो जी, से जन जुग में सोवासी, से मुक्त पै जिन हर त्याया जी, तिन तो टेजा मंकी फासी, जिन निर्वाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिन का पाओ सब गवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, तिहार रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे पग तेरे पासलां तुझ अनक अनेक अनंता, तेरे अनक ते करे हर पूजा जी, तब तापे जवे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बहु सिमसा जी, कर

ਕਾਰਾ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਹਾਰ ਜਾ ਸਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵੈ ਸੂਚਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ ਮੁਖਾਵਤ ਤਾ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਕਟ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਾਣਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਡ ਲਾਵਤ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਨ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮ ਮਰ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਤਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਨ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਥ ਨਬੇਰਾ ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ਉਪਾਮ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵਾ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸਾ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਆਠ ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਤੇ ਅਵਰ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਆਗਤ ਬਰਲੋ ਬਹਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾ ਬੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਮੁਖ ਤਾਕੋ ਜਸ ਸਸਨ ਬਖਾਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਰਿਤ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸੇ ਧੀ ਕਰ ਜਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਜੇ ਬਰਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਰ ਉਲਹ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕੈਤ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਟਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਦ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੁੱਖਣ ਪਹਿਰੀਜੈ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕੋ ਆਲਸ ਕੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਸਤ ਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬੂਰਾ ਬਿਸਾਰੀ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰੱਖ ਪ੍ਰਭੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਨਾਈ ਬੂਠਤ ਬੈਠਤ ਸਤ ਸਤਿਆਈ ਤਿਸ ਧਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅਲਖਾ ਨੀਹਾ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਾ ਹੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਂਡ ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਚਾਰ ਬਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾਧ ਸਾਧ ਚੁਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਸੈ ਸਮਾਵਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਬਰਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸਹਿ ਜਾਣ ਮਾਣ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਾਂ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰਾਜ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀਗਤ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪੈ ਜਪੈ ਸੁਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਇ ਸੋ ਹਰਗੁਣ ਗਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਾਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ ਸਰਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ਆਪੋ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰਨਾਥ ਨਾਨਕ ਇਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ਸਲੋਕ ਅਗ ਮੈਂ ਗਾਦ ਪਰ ਬਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਾ ਸੁਮੁਖਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਬੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਚੱਜ ਕਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇਰਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਯਤਨ ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਕੌਣ ਪਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁੰਚਾ
साध संग सबकी देन, साधक संग मनोहर बैन, साधक संग न कहत हूँ तावा, साध संग अस्थित मन पावा, साधक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कह संग वहाँ पुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साधक संग न बींगा पैर, साधक संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साधक संग ना ही हो ताप, साधक संग तज सब आप, आपे जानना है साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बाणाई, साधक संग न कबहू तावा, साधक संग सदा सुख पावा, साध संग बसत गोचर लह, साधु का संग अजर सह, साधक संग बस थान ऊंचा, साधु का संग बैल पहुंचा, साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्मा, साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कह कुरबान, साधक संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटा मनिस्तारे, साधु कह संग सो तन पावा, जिस तन से सब को बरसावा, साध संग धर्म रह करे सेवा, साधक संग शोभा सो देवा, साधु का संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साधु का संग सर्व थान गाम, नानक साधु का संग सफल जन्म, साधु का संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट तो होत निहाल, साधु का संग कलूखत हर, साधु का संग नरक पर हर, साधु का संग इहा वहां सुहेला, साधु संग बिछड़त मेला, जो इच्छा सोई फल पाव, साधु का संग न बिरथ जावे, पार ब्रह्म सद रिद बस, नानक उदर सत सुन रसा, साधक संग सुनो हर नाव, सत्संग करके गुण गाओ, साधक संग न मन ते बिसरा, सत्संग सर पर निसरा, साधक संग लगे प्रभ मीठा, साधु कह संग कट कट डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साधक संग मिटे स्वरोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जाना, जेता सुने तेता बख्या नै, साध की उपमा तो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचे ऊंचे, साध की शोभा मुचे मुचे, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु भेद न पाई, सलोका मन साचा मुख साचा सोए, अपना पेख एक बिन कोए, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर्य सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राजन को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर्जेक, जो बसदा को खोदा को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक जो पावक का सहस पाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश, जैसे तरु प्रकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी का ना ही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जन प्रभा पकरे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रास, ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब उपरमया, ब्रह्म ज्ञानी दे कश ब्रह्म पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर्व कर माह, ब्रह्म ज्ञानी का ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का हो सफला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उद्धार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवा, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह के करंग, ब्रह्म ज्ञानी के बस प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जैसे करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाय आदि आकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाना, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता,
ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का साब प्रहात ना, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी अपन अलंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोका, और तारा जो अंतर नाम, सर्व मह पेख भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक उहो अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पात्र रूप ना पेख नेत्र, साथ संग साध की टहल संसंग हेत, कर ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाना आप सगो मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हर मन की वासना, मन ते टराय इंदी जगत पंच दुख ते रहत, नानक कोट पदे को ऐसा परस, वैष्णो सो जिसो परसो, प्रसान बिसन की माया तुय हुए भिन्न, कर्म करत हो वैने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल, धर्म काहू फल की इच्छा निभांछा, केवल भगत कीर्तन सांग रचा, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, साबु प्रभुवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावा, नानक को वैष्णो परम का तपावा, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट कर संग, मन ते बिनस सगला परम कर पूजे, सगल पर ब्रह्म सत्संग पापा मल खोवा, तिस भगवती की मत उत्तम होवा, भगवंत की टहल कर नित नीत, मन तन अर्प बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय वसावा, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावा। हे नानक है जो पंडित जो मन प्रबुद्ध, राम नाम आत्म शुद्ध, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमत बुझ मूल, सूखम मैं जाना अस्थूल, चौ वर्णा को दिपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सब को ज्ञान, चौ वर्णा मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सत्संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर तारा, पस प्रेत मुग्ध पाथर को तारा, सर्वरोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितना पाइय धर्म, नानक तिस मिला जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन परम का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतर भाई तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान अपने, सो दास दरगह प्रवान अपने, दास को आप कृपा करे, तिसको सब सो जी परा, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावा, जीवन मुक्त सुख हावा, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर ताय साई जुगत, नानक हो पुरख कही है जीवन मुक्त, पार बम के सगले ठाव, जित जित कर राख तिस तन नाव, आपे कर्ण करह वन जोग, प्रभ पावै सुई फन होग, पसरे आप हैं तत लंग, लखे जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत न पारा बार, नानक रचना प्रभ रची, बहु बिद अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी, कई कोटाचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थ वासी, कई कोट बन परम उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी ईश्वर होते, कई कोट आत्म ते अंतहरा, कई कोट कव का विचार, कई कोट नवत नाम ते हवा, नानक करते का अंत ना पावा, कई कोट पै अभिमानी, कई कोटा अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट पेगा तमने कोर, कई कोट पर दर्ब को हिरा, कई कोट पर दुख न करहा, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश प्रमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाना करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सत्य सुर नक्षत्र, कई कोट देव दानविंदर सिर छत्र, सगल समग्री अपना सूत तहरा, नानक जिस जिस भावा तिस तिस निस्तारा, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमर तर सास्त, कई कोट किए रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जा किन्नर पसाच, कई कोट पुत्री सूकर मेरे गाच, कई कोट भूत परे सूकर मेरे गाच, सब ते नेरे सब हुते दूर, नानक आप अलिपत रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी,
कई कोट जन्म जीव हमारा, कई कोट बो जोनी फिरा, कई कोट बैठती खाहे, कई कोट काला थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंता, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ के हाथे, कई कोट पैबे रागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म है पारवम लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिले प्रभ विनाश, कई कोट मांग सतसंग, पार बम तिन लागा रंग, जिनको हो आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हो अवतार, कई जुगत की नो विस्तार, कई बार पसर पसार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट किन्ने बहु भांत प्रप्त हुए प्रमाह समात, ताका अंत न जान कोय, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हुवत आत्म प्रगास, कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर पै सद ही जीव, कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस समावै, अपने जन को सत सत समारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बल हार न, जल थल मही अल सोहे, अष्टपदी करण करावन करन है जोग, जो तिस पावै सोई होगा, किनमै थाप थापन हारा, अंत नहीं केशु पहरा बारा, हुक्मे तर अदर रहावा, हुक्मे उपजो हुक्म समावा, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखा अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहा समाई, प्रभ पावा मानुख गत पावा, प्रभ पावा ता पाथर तरावा, प्रभ पावा बिन सास तिराख, प्रभ पावा ता हर गुण पाख, प्रभ पावा ता पत उधार, आप कर अपन बीचर, दोह सिरिया का आप स्वामी, खेले बिगसा अंतर जामी, जो पावा सो कार करावा, नानक दृष्टि अवर ना आवा, कह मानुख ते क्या हुई आवा, जो तिस पावा सोई खरावा, इसका हाथ हो तो सब किश ले, जो तिस पावा सोई करे, अन जानत भिख्या मैं रचा, जे जानत अपन आप बचा, पर मैं भूला दस दसावा, निमख मह चार कुंट फेरावा, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन नाम मिले, हे नीच किए खिन मैं नीच कीट को राज, पार बम गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु न आवा, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावा, जाको अपनी कर बख्शीश, ताका लेखा न गणे जगदीश, जियो पिंड सब तिस की रास, कड़ कड़ पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई, इसका बल नाही सुहात, करन करावन सर्व कुनाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावै सोई पौन थियो, कबहू ऊच नीच में बसा, कबहू सोग हरख रंग हसा, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत्य करे भुपात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू हे बह बड राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत में आवै, कबहू पला पला कहावै, ज्यों प्रभ राख तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहु हे पंडित कर बख्यान, कबहु मोन तारी लावे ध्यान, कबहु तट तीरथ स्नान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहु कीट हस्त पतंग हो जिया, अनक जोन परम है परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावा, जो प्रभ पावा तिव नचावा, जो तिस पावा सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहु सात संगत पावै, उसा स्थान ते बौर ना आवै, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उसा स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसा पर ब्रह्म के संग, जो जल मैं जल आए खटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए बिश्राम, नानक प्रभ का सदकुरबान, सलोक सुखी बसा मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज विमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाना मैं जो बनमंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस को कर्मवंत कहावा, जन्म मरब जोन परमावा, तन भूमिका जो कर गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान,
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਾ ਮੁਖ ਤਾਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਰ ਗੁਰ ਬਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਵਨ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ ਪਉ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਪੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨਮੈ ਹੋਇ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਦਾ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ ਸੋਜਣ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਤਾਰੇ ਸ੍ਰਮ ਪਾਵਾ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਣਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਣਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕਿਰਿਅਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੁਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੁ ਬਹਿਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨੇਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇਸ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋਂ ਛੂਟਾ ਸਹਿਸ ਕੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਟਤਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਣਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰਾ ਨਾਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਾ ਖਪ ਖਪ ਮਰਾ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੂ ਰਾਜਾ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਤ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ

साथ साथ प्रभु तुम्हें थे आवो चरण कमल से लागे प्रीत भगत करो प्रभु की निधनीत एक ओट एक आधार नानक मांगे ना प्रभु सार प्रभु की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाहो साध के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंधन लिवलाग बड़ पागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मातल निर्मल मातलई जन को प्रभ होयो दयाल सेव कीनो सदा नयाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मन दुख भ्रम गया इच पुनी सरदा सा पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन में राख गुरु प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसरे जे बिखते काड जन्म जन्म का टूटा गांड गुरपुरे तत हे बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भगती तन हो शिशार सर्व कल्याण सुख निज नाम बूट जात पाए विश्राम सगल दुख का हो तनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर एह सुआओ नेत्रोपेख दर सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बसदी जे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शांत दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरनी सो भातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सर्ग

पशुपति जब अकारे कशना दस देता, पाप पुण्य तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चहन ना जावत, तब हरक शोक कह किसे व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। अपन खेल आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त को किस को गनी। जब एके हर गम पार, तब नरक सुर्ग को कौन उतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए, तब से सकद कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी जो तरे, तब कवन निर कवन कद डरे। आपन चल तब करने हार, नानक ठाकर गम पार। अविनाशी सुख अपने आसन, तै जन मन को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोचर प्रभे का, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नानरंजन गोचर अगा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही चर जा, नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पद होता, तै बिन मैल कहूँ क्या तोता। जय निरंजन निंकार निर्वाण, तै कौन गुमान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तै शल शिदर लगत को कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावे, तै किसे भू कवन त्रिपतावे। करण करावन करने हार, नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए भाव मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कतेब कहा कुचीन। जब अपन आप उतारे, तो सगन अप सगन कहाँ विचारे। जय अपन उज अपन अबनेरा, तै कौन ठगर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। जय शल अशेद अभेद समाया, ऊहा किसे व्यापत माया। आपस को आपे अदेश, ते गुण का नाही प्रवेश। जय एक एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप अतियारा, तै कौन कसे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। जय अवरजियो परपंच अकार, ते गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तै पही कहावत, को नरक को स्वर्ग विषावत। आल जाल माया जंजाल, हमे मोह परम पैपार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की उपख्यान। अपन खेले आप कर देखे, खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत तै आप, जय पसरे पसार संत प्रताप। दोहु पाक का आपे तनी, उनकी शोभा उनहु बनी। आपे कौत करे अनंत जोज, आपे रस भोगन निर्जोग। जिस पावे तिस नापन न लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे।

हड़ै ता सर्व सुख पावे मेरे मना। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके वस है काम तेना। सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सत नाम सदा सत नाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित ध्याइए हर पुरख निरंजना। रहाओ जै हर सिमरन पया तैं उपाद गद कीनी, वड भागी हर जपना। जन नानको गुरे मत दीनी, जप हर भवजल तरना। जय हर सिमरन पया तैं उपाद गत कीनी, वड भागी हर जपना। जन नानको गुर मे मत दीनी, जप हर भवजल तरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परमस्कार जो सत्संग जीओ, सतगुरु की रहमत हुई है। शामा दे दीवान दियां हाजरियां भरिया ने, शब्द चौंकी च कीर्तन सुध रहा सब दे पाठ उपरंत। भमरा परिवार जिन्हें दे पुत्र नूं सतगुरु ने पायलट की जो स्टडी वह बख्शी है, अदे बच्ची जसवीर कौर भमरा वो कैनेडा च पहुंचे ने शुकराने वजो। बच्चों की चढ़ती कला लई परिवार की सुख शांति वास्ते, इस तरह भाई गुरदीप सिंह धूत परिवार वालों बजुर्गों की याद परिवार की सुख शांति लई, परिवार की चढ़ती कला लई परिवार वालों सुखमणी साहब के पाठ आरंभ किए गए संपूर्ण दस संपूर्ण हो प्रण दाता जी हो की कृपा नाल दोनों परिवारों की चढ़ती कला लई गुरु चरणों में अरदास बेनती हुई है। सतगुरु ने पवित्र हुक्मनामे बख्शे जो आप श्रद्धा न सरवण किए ने, गुरु कृपा करे बख्शिया उपदेश सरबत संगत हिरदे विच वसे। वैसे गुरबाणी का एक बचन भी अगर साढ़े हिरदे विच वस जाता है तो वह जीवन विच मोड़ लिया दिंदा है। बाणी आपू जीवन की जाच दसदी कि जीवन की है। जिमें अज तुहानू सतगुरु ने हुक्म बख्श किया है तो इस हुक्म का उपदेश जो सतगुरु ने बख्शिया पे, इच्छा पूर्व सर्व सुख दाता हर, सारिया इच्छा पूरिया करने वाला एक परमेश्वर है। जाके बस है काम धेना। सनातन धर्म के लोग मानते कि कोई गऊ है नहीं, पर गुरमो प्यारे हर एक मन की इच्छा पूरिया करने वाला परमेश्वर है। जे अज ये शब्द साड़ी जहन में बस जाए तो किमा करना, फिर सानू थां थां ते जाण दी लोड़ नहीं। फिर हमेशा ही असी उस परमात्मा के चरणों में हर पार कारज लई अरदास ही करनी है। मालिक आपे कृपा करदा उहदे वास्ते। सतगुरु कहिंदे जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित्याई हर पुरख निरंजना। सदा उहनू चेते विच रख। सो गुरु कृपा करे दोनों परिवारों नू चढ़दियां कला बख्शन, बच्ची दे कैनेडा आउण दियां ते बच्चे दी एडमिशन दियां बहुत बहुत वधाईआं, और धूत परिवार दे नाल अरदास उन्हां दी सलाना याद विच हमदर्दी प्रगट करदे आं। उहदा भाव बहुत बाणियां कहानियां पुत सपुत कर हमेशा ही बजुर्ग साढ़े घर च ही रेंदे ने, जे असी उन्होंने याद करते रहने, क्योंकि उन्होंने गुण साढ़े अपने गुण ने। जिमें आप कहने कि उन्होंने गुणों चेते किए साड़ी जिंदगी होर गुण पैदा हो जाते हैं। गुरु कृपा करे तुहाडा परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों परिवारों वालों गुरु के लंगर की सेवा भी है, तो जिथे गुरु के लंगर की सेवा उत्थे कीर्तन की सेवा भी दोनों परिवारों वालों आ। आप इतें भी हाजरी भरनी है, कोशिश करो कि आप हौली हौली लंगर च जाइए, तो जे लंगर छक लिया तो फिर आ के फिर आप कथा भी सुनीए इतिहास भी सुनीए, तो कोशिश करा करे गुरुद्वारे जाण के जो प्रचारक श्रेणी आ इनू सुनिया जाए तो इन्ह का मान सत्कार किया जाए। दोनों परिवारों का मैं बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने ग्रंथी सभा वास्ते भी अरदास भेटा दी है। गुरु कृपा करे इन्हों चढ़दियां कला बने सेवा थाए पौन सुआओ।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਾਡੀ

बाणी कोई नावल नहीं, ये कोई वार्ता नहीं, कोई किताब नहीं। फिर सवाल खड़ा होता भी गुरबाणी है कि चीज। गुरु अमरदास महाराज जवाब देंदे ने, कहिंदे गुरबाणी इस जग मह चानण, करम वसे मानो आए। गुरबाणी इस संसार विच रोशनी है, लाइट है। गुरबाणी बंदे नूं मनुख नूं ज्ञान दिंदी है, एक जिंदगी जीउण दा ढंग दसदी है। हुण बाणी गाउणी किहनां ने? गुरु अमरदास जवाब दिंदे, कहिंदे जिन को नदर करम होवै हिरदे तिन्हां समाणी। जिहदे उत्ते सतगुर की कृपा होनी है ना, उहदे हिरदे च गुरबाणी ने वासा करना, दूजे ने नहीं करना। लाई चले को बंदा मनुख जोर। जिस मनुख ने गुरबाणी विचारनी है, गुरु अर्जन देव महाराज जी का सका भरा पृथ्वी चंद पुत का गुरु रामदास महाराज ने सी, उन्हें गुरु अर्जन देव महाराज उत्ते जानलेवा हमला किया, हरगोबिंद साहब महाराज उत्ते किया, सप छड़िया, जहर दिती। कदी सुलही खान, कदी सुलभी खान फौजा लैके चढ़े, पर गुरु अर्जन देव महाराज का वाल बिंदा नहीं होया। पढ़ाई सी सखा। इथे तकर गल आ पहुंची, गुरु रामदास महाराज लंगर मस्ताने हो गए। उन्हें अपने मसंदा नूं राहां च सड़कां च खड़े कर दिता। जिस कोई गड्डा कोई रस्ता दा आउंदा जां किसे दे हाथ में झोला फड़िया आ, उन्हां मसंदा नूं थोड़ा पता सी भी उत्थे कहानी की वापरदी है। उन्होंने कहना भी लंगर दी माया आओ दिओ सानू। उन्हें माया भी लंगर भी सारा सांभ लेना, रस्ता मस्ता लंगर मस्ताने हो गए। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने माता गंगा जी के जेड़े उस वेले ब्याह विच जो घर दिया ने परिवार ने गहने पाए सो बेचने पै गए, गुरु नानक दे लंगर की खातर। बे लंगर मस्ताना नहीं होना चाहिए, लंगर चलना चाहिए। सिख धर्म की एक प्रथा आ भी लंगर नूं बहुत महत्ता दिती है। धर्म सारे सत्कार योग ने, कोई माड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सारे सत्कार योग ने, पर सिख धर्म के लंगरां की महत्ता बहुत वा। यह गुरु नानक महाराज ने आरंभ किया। इथे तिकर के पृथ्वी चंद ने गुरु अर्जन देव उत्ते मुकदमा दायर किया, बे गुरु नानक की गद्दी का मैं मालिक होना चाहिए, मैनू गद्दी लैके दिओ। इहने इहदे सहुरे सी पिंड हेरी, इहने डुप्लीकेट दरबार साहब बनाया। जे हरमंदर साहब दुख भंजनी बेरी है, उन्हें दुख निवारण बेरी लाई, पूरी रीस की। एक थां बाणी दी पंगती आउंदी, जो सतगुर की रीसे कच पिच बोल दे, बे रीस कर दिया, जो मूंह च आउंदा कच्चा पिल्ला बोली जांदे। पृथ्वी चांदरा पुत्र मेहरवान, वो कच्ची बाणी उचारन लग पे। जदों बाणी उचारदा ते नानक पद वरतदा। सिखां ने आके संबोधन होके गुरु अर्जन देव मन कहन लगे, सच्चे पातशाह की बनूंगा? भोले सिख पंजाब दे तो समझ जाणगे, जिहड़े काबुल तो, कंधार तो, पोठो तो, उड़ीसा चो, राजस्थान चो, गुजरात चो सिख आउंदे आ, उन्हां नूं किदां पता लगू? उन्हें तो भाषा ही हिंदी आ। गुरबाणी नूं किवें निखारनगे वी इह बाणी सच्ची कि झूठी है? पता किदां पता लगू? क्योंकि पृथ्वी चंद भी नानक शब्द पद वरतदा। फिर गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे भी हुण गल इत्थे मुकदी है,
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਲਿਖਵਾ ਹੋਇਆ। ਈਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਜੀਲ ਲਿਖੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਖੀ। ਜੇ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਆਰੰਭ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਬਿਆਸ ਲਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਉਚਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।

कहो नानक बेअंत बेअंत त्याया दुतर संसार सतगुरु तराया मिटियाया वागौन जहाँ पूरा पाया हर हामृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ हाथ पद्म आगन सुख बासना सखी मूरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुगरा सुहार हर हृद सद नावनद बसा जिस सदा कर पारत है रावण जाह सही ताला जी है नित पर तू हर है पर दर्ब सिंदर कद ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनत पै पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बन आकाश तले तर सोती दह दिस चमक बिजल मुको ज्योति खोजता फिरो विदेशा प्यो कद पाइए हर हां जे मस्तक होवे भाग तां दर्श समाइए डिठे सबे थाव नहीं तुरजिया बधो पुरख मिधाता तां तू सोइया

खोजू ता की चरण कहु कत पाइए, हर हां सोई जतन बताए सही प्रयु पाइए। नैन ना देखे साधु से नैन बिहलिया, करन ना सुनही नाद करन मुंद कालिया। रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटिए, हर हां जब मिसर गोबिंद राय दिनों दिन कटिए। पंकज फाथे पंक महा मद गुफिया, अंग संग उरिहाए बिसरते सुंफिया। है को ऐसा मीत जे तेरे तोरे बिखम गांठ, नानक एक श्री तर नाथ जे टूटेले साठ। दाऊ दशा अनेक प्रेम प्रभु कारणे, पंच सतावै दूत कवन विद मारणे। तीखण बाण चलाए नाम प्रभु त्याईए, हर हां महा बिखादी घात पूर्ण गुर पाईए। सतगुर कीनी दात मूल नान खुटई, खावै पहुंचै सब गुरमुख छुटई। अमृत नाम निधान दिता अंतो सहार, नानक सदा अराध कदे ना जाहे मार। जिथे जाए भगत सोथान सुहावना, सगले हुए सुख अर नाम ते आवना। जी करन जयकार निंदक मुए मापच, साजन मन आनंद नानक नाम जप। पावन पतत पुनीता कथे नहीं सेविय, झूठे रंग खुआर कहां लग खेवी है।

कहां लो पाखई एको चेतिंगवार काज तिरे आवई हरहा बिन नावे तनसार बिरथा सब जावई औ खुद नामे अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावे संत सगल को दीजई जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावने हर हां हम बलिहारी तैना जी हर रंग रावणे वैदां संदां संग इकट्ठा होया औ खुद आए रास बिच आप खोलोया

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सम्मन जो इस प्रेम की गम को ती साट रावण हुते सो रंकन है जिन सिर दीने काट प्रीता प्रेम तन खचनिया बीच ना राई होता चरण कमल मन बेदेव भूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन।

कर्मा मूसा न मस्कर प्रेम की रहे जो अंबर शाये बीदे बांधे कमल में पावर रहे लबटाए जाप ताप संयम हरख सुख मान महत यार गर्भ मूसा न निमखक प्रेम पर वार वार देव सर्ब मूसा न मर्म न जानई मर्त हिरत संसार प्रेम प्रेम नाम बे देव उर्जो मैथ व्यवहार गब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल मूसन तभी मूसी है बिशरत पुरख दयाल

कमलनयनयंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन ब्रह्म सिंह खंड खंड करहार मगन पिहो प्री प्रेम सो सूद न सिमरत अंग प्रगट पिहो सब लहो मैं नानक आदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जियो के एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम आद जुगादि सगल भगत ताको सुख मिश्राम कबीर मेरी जात को सबको हसने हार बलिहारी सिंजात को जहन जपियो सिर जनुहार कबीर डगमग क्या कर है कहाँ डुलावै जियो सर्व सुख को नाइको राम नाम रस पियो कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ

जो जीवक मृतक हुए निरपै हुए कै गुण रवे जात पेखो तत सोए कबीर जां दिन हौ मुआ पाछै पिया आनंद।

हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। कबीर याई मुझे पह अनक करे कर पीसा, हम राखे गुरे अपने उनकी नो यादिसा। कबीर सोई मारी है जह मुए सुख होए, भलो भलो सब को कह बुरो न मान कोए।

कबीर माया डोलनी पवन वहै अवतार। जिन बुलोया तिन खाया अबर मलोबनुहार। कबीर माया चोरटी मुस मुस लावै हाट। एक कबीरा नाम मुसै जिन कीनी बार है बाट। कबीरा सूख न यह जुग करै

राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ ना खोला, नहीं पटन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोला। कबीर तांस्यों प्रीत कर जा को ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति आवै कौने काम। कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुविधा जाए, पावै लांबे कीस कर पावै कर मुडाए। कबीर जग काजल की कोठरी अंध परे तिसमाहे, हौं बलिहारी तिन को पैस जो नीक संजाहे। कबीर एह तन जाएगा सको तालेहो बहोरा, नांगे पावो ते गए जिनके लाभ करोरा। कबीर एह तन जाएगा कबने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जानिया कोए, ऐसे मरने जो मरे बहुर ना मरना होए।

कबीरा तू ही कबीरा, तू तेरो नाओ कबीरा, राम रतन तब पाई है जो पहले तज है शरीर। कबीर झांखना चंखी है तुमरो केहो ना होए, कर्म क्रीम जो कर रह मेट ना सके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टके ना कोए, राम कसौटी सो सह जो मर्जी वाहोए। कबीरा यूजल पहरे कापरे पान सुपारी खाहे, एक सुहर के नाम बिन बांदे जमपुर आहे। कबीरा बेड़ा जर्जरा फूटे शेक हजार, हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार। कबीर हार जरे ज्यों लाकरी, केस जरे ज्यों कहासा, यह जग जरता दिख कै पिहो कबीर उदास। कबीर गर्ब न कीजिया चाम लुपेट हाड, हैबरी ऊपर छत्र तार ते फुन तुरनी तरनी गाड। कबीर

सांझा करे कबीर सिंह हर संग वणज करे। कबीर ए चेतावनी मत सह सार जाए, पाछै भोग जो भोग वै तिनको गुड़ लै खाहे। कबीर मैं जान्यो पढ़बो भलो, पढ़बे स्यो पल योग, भगत न छाडो राम की पावै निंदो लोग।

खिंथा जल कोयला पही तांगे आंच न लागू। कबीर खिंथा जल कोयला पही खापुर फूट मफूट जोगी बापुड़ा खिलो आसन रही बपूत।

कबीर समुंद ना छोड़िए जौत खारो होए पोखर पोखर ढूंढते पलो ना कही है कोए। कबीर निगसाए बह गए थांगी नाही कोए दीन गरीबी अपनी करते हुए सोए। कबीर बैसनो की कुकर फली साकदगी बुरी माए ओह नित सुने हर नाम जस यो पाप मिसाहन जाए। कबीर हरना दूबला एहो अरियारा ताल लाख हेरे एक जियो किता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो घर घर है पीवै निर्मल नीर बिनवर भगत ना मुक्त होए इं कह रमै कबीर। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर पाछै लागू हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पीरी चूना यू जल पाए

कबीर हरदि पीरतन हरै चून चहन ना रहाए बलिहारी एज प्रीत को जह जात मरन कुल जाए। कबीर मगत मुक्त द्वारा संकुरा राई दसै पाए मन तो मैगल हुई रिहो निक्सो क्यों कह जाए। कबीरू ऐसा सतगुरु जी मिले

कबीर नाम है छाना छापरी, नाम है घर नहीं गाओ, मतवार पूछे कौन है मेरे जात ना नाओ। कबीर मोहे मरने का चाहू है, मरो तहर कै द्वार, मतहर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर नाम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किस हर किया प्यो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूं बरनाई कै, जय मुख निक्ष राम, ताकि पग की पान ही मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पुतरे, मान सुराखियो नाओ, चार दिवस के पहुने बड़ बड़ रूंद ठाओ। कबीर मेहंदी कर कालिया, आप पिसाए पिसाए, तैं सैं बात न पूछी है कभू न लाई पाए।

कबीर डूबा था पह उबरियो गुण की लहर चंबाकू जब देखियो बेड़ा जर्जरा तब उतर परियो हों फराकू। कबीर पापी भगत ना पावई हर पूजा ना सुहाई माखी चंदन पर हरै जह बिगंध तह जाए।

एक कबीरा नाम हुआ, जह नाही रोब नुहार। कबीर राम न त्यायो, मोटी लागी खोर। काया हांडी काठ की, ना हो चरै बहार। कबीर ऐसे होई परी, मन को पावत कीना। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सुंदौरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिया, गुण को मरिए रोए। अवगुण यारे मानस पलो न कह कोए। कबीर गागर जल भरी, आज काल जाहे फूट। गुर जो ना चेत है अपनो, अंध माज ली जहेंगे लूट। कबीर कुकर नाम को, मुतिया मेरो नाओ। गले हमारे जेवरी, जह खिंचे तह जाओ। कबीर जपनी काट की, क्या दिखलावे लोए। हृदय राम न चेत ही, ए जपनी क्या होए। कबीर बिरो भंग मन बसाए, मंत न माने कोए। राम बियोगी ना जिए, जिए तंबौरा होए। कबीर पारस चंदन है, तिन है एक सुगंध। तह मिलते उत्तम पहे, लोह काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मुहे मिलियो, तिन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे, हो ही भला दारू मेरे वस। ए तुम बस तुम पाल की, जब पावे ले खस। कबीर नौबत अपनी, दिन दस लिहो बजाए।

आए बसुदा कागद जो करो हर जस लिखन न जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसै गोपाल। कबीर रमैया कंठ मिल चूकै सर्ब जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए

समाए जिन हर का नाम न चितियो बंद जन्मे आए। कबीर वासा करिए राम की अवरे आस निराश नरक प्रहति मानई जो हर नाम उदास। कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत चाले थी हर मिलन को बीचे अटके उचीत। कबीर कारण बापुरा क्या करे जो राम न करे सहाय। जह जह टाल डाली पग तरो सोई मुरमुर जाए। कबीर अवरे कोई उपदेश दे मुख में पर है रीत। रात बरास बरानी रखते खाया घर का खेत। कबीर साधु की संगत रहो जो की पूसी खाओ। होनहार सो हुई है साक तू संग न जाओ। कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत। साकत कारी काबरी तोए हुए ना सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए। जो किश किया सो मन किया मुंडा मूंड अजाए। कबीर राम ना छोड़िए तन धन जाए ता जाओ। चरण कमल चित बिंदिया राम नाम समाओ। कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार। जंत बिचारा क्या करे चले बजा बनुहार। कबीर माए मुंडो तह गुरु की जाते परम न जाए। आप डुबे चौबेद में चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखी तले दुराए। प्रगट भये निधान सब जब पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पालियो बहुत कुटंब। धंधा करता रह गया पाई रिया ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै रात जगावन जाए। सरपन हुई कई उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै आहोई राखे नार। गधे हुए कै उतरे पार सहे मन चार। कबीर चतुराई अत कनी हर जप हृदय माहे। सूरी ऊपर खिलना गिरे ता ठहर नाहे। कबीर सोई मुख धन है जा मुख कहिए राम। देही किसकी बापुरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल भली जा कुल हर को दास।
जह कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गह बहान सगन घन लाख तजा फहराए या सुख ते भिख्या भली जो हर सिमरत दिन जाहे। कबीर सब जग हों फिरियो मांदल कंध चुंडाए कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक मिजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निगसियो आए ज्योत बिना जगदीश की जगत्यो लंघे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजियो पूत कमाल हर काम सिमरन छांड कै घर लै आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजै कोए पाछे पाओ ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बाद्यो जै जेवरी तह मत बंद हो कबीर जह आटा लोन ज्यों सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सहनाओ अजो जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाओ। कबीर नैन निहारू तुझको सरबन सुनो तू नाओ बैन उचरो तू नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहो आंते अर याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कै कह कहो कह ना कोपत आए हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुण गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे जैसे बचर है कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर घन हर छाया बरख भरे सवरताल चात्रक ज्यों तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चक्के जो निसंबिछरे आए मिले प्रभात जो नर बिछरी राम सिंह ना दिन मिले ना रात। कबीर रे नायर बिशूरिया रहो रे संख मजूर देवल देवल दहाड़ी दिसै उगबत सूर। कबीर सूता क्या कर है जाग रोए पै दुख जा काम बासा गूर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है
उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गूड़ पसार। कबीर सूता क्या कर है, बैठा रहो अर जाग, जाके संगति बिछुरा ताहीं के संग लाग। कबीर संत की गहल ना छोड़िए, मार्ग लागा जाओ, पीखत ही पोनीत होए,

जाए पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही काबू। कबीर ठाकुर पूजे मूल ले मनुहठ तीर्थ जाहे। देखा देखी सुमांग तार पूले पटका खाहे। कबीर पहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार। इस प्रवासे जोर है बूढ़े काली तार। कबीर कागद की उबरे मस्क कर्म कपाट। पहान बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंत है अभय कर अब करता सोयताल। पाछे कछु न होएगा जो सिर परवावे काल। कबीर ऐसा जांतिक देखिया जैसी धोई लाख। दिसे चंचल बहुगुना मत ही ना ना पाक। कबीरा मेरी बुद्ध को जम ना करे तिस्कार। जिन हो जमुआ सिरजिया सो जपिया परवदगार। कबीर कस्तूरी पिया पवर पही समदास। ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गच परियो कुटंब कै कंठ रह गयो राम। आए परे तर्म राय के बीचे तुमा धाम। कबीर साकत ते सूकर भला राखी आछा गाऊ। ओ सागन बापुरा मर गया कोयल नेह नाऊ। कबीर कौडी कौडी जोर कै जोर लाख करोड़। चलती बार ना कछ मिलियो ले लंगोटी तोर। कबीर वैष्णो हुआ ता क्या प्या माला मिली चार।

पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है जो तरनी में खे। कबीर खे हुई तो क्या प्या, जोड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सर्वंग। कबीर पानी हुआ ता क्या प्या, शीरा ताता हुए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊंच पवन कन कामनी, शिखर तजा फहराए, तांते भली मंदूकरी, संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर भला, राम भगत जह ठाए, राम स्नेही बहरा, जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे, सहज सुन के घाट, तहां कबीर मट किया, खोजत मुन जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, जो तैसी निभे औड़, हीरा किसका बापुरा, पूजे ना रतन करोड़। कबीर कबीरा एक अंचंभव देखियो, हीरा हाट बकाए, बंजन हारे बहरा, कौड़ी बदले जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है, जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजी ता क्या प्या, जो मान तजिया नहीं जाए, मान मुनि मने वरगले, मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया, शब्द जो बहाया एक, लागते पोए मिल गया, परया कले जे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मह चूक, अंधे एक ना लग गई, ज्यों बांस बजाइए फूक। कबीर है गे बहन सगन कहन, छत्रपति की नार, ताश पटंतर ना पुजे, हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओह मांग सुवारे बिखे को, ओह सिमरे हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पही, सतगुर बंदी तीर, कबीर हीरा बन जाया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहौरी, लैके मांडे हाट, जब ही पाई है पारखू, तब हिरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिया, ऐसा सिमरो नित, हमरा पुरबासा करह, हर गया भौर बित। कबीर सेवा को दोए भले,
एक संत विक्राम राम जो दाता मुक्त को संत जो पावे नाम। कबीर जह मार्ग पंडित गए पाछे परिभीर एक अब कट काटी राम की तह चढ़ रहो कबीर। कबीर दुनी दुनिया के दोखी मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाजसी जब ले तरे मसान। कबीर डूबें गोरे बापुरी बहलोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर भली मधु करी ना।

जन नहीं कुए कह जाने अपन तनी कह दास नुमानी होए। कबीर पली पही जो पहो प्रिया दिशा गई सब भूल और आंगन पानी पिया जाए मिलियो टल कूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी दे दिवस चार कोपी खना अंत खे की खे। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब दे गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खे। जहन पहो तै भै नहीं जै पहो तै हर नाहे केहो कबीर बचार कै संत सुनो मन माहे। कबीर जिन्हो किछ जानिया नहीं कबीर जिन्हो किछु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए। हम हो जो बूजा बूजना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और लागी चोट मरम की रिहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेली सेल की लागत ले उसास चोट सुहारे शब्द की तास गुरु मैंदास। कबीर मुला मुनारे क्या चढ़ै साई न बहरा हुए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतन जोए। सीख सबूरी बहरा क्या हज का बेजाए कबीर जा के दिल साबत नहीं ताको कहा खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जह सिमरत दुख जाए दिल में साईं प्रगटे बुझे बलंती नाए। कबीर जोरी की ये जुल्म है कहता नाओ हलाल दफ्तर लेखा मांगी है तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खीचरी जाम है अमृत लोन हीरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानी है मिटै मोह तनताप हरक सोग दांजै नहीं तब हर या पह आप। कबीर राम कहन में भेद हुआ

कबीर रामे राम कह कहबे माहे बबी को एक अनिकै मिल गया एक समाना एक। कबीर जा कर साधना सेवी है हर की सेवा नाहे ते कर मरहट सारखे पूत मसे तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बाबरा

कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए अनकु सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलया खुदाए साई मुझ स्यों लरप्रिया तुझे किन फुरमाई गाए।

कबीर जी जू मारे जोर कर, कहते हैं जो हलाल दफ्तर दई जब कांड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जुबाब खुदाए दफ्तर लेखानीक से मार मुहे मुहे जा खाए। कबीर लेखा देना सोहिला जो दिल सूची होए, उस साची दीवान में पला न पकड़े कोई। कबीर तरती अर आकाश में दोए तू बरी अबद, खटर खट दर्शन संसय परी आर चौरासी सद। कबीर मेरा मुझ में किस नहीं, जो किस है सो तेरा तेरा।

मुझ में रहा न हो, जब या पापर का मिट गया, जत देखू तत तू। कबीर मिकार है चितबते, झूठे करते आस, मनोरथ कोई ना पूरे हो, चाले उठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार, इत उत कथे ना डुलई, जिस राख है सिरजनहार। कबीर कहानी पीड़ते, सतगुरु लिए छडाए, परा पूर्वली भावनी प्रगट होई आए। कबीर टाले टूले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए,

मुक्ति राम समाल हाथ पाँव कर काम साबु चीत निरंजन नाल महला पंजवा कबीरा हमरा को नहीं हम किस हों के नाहे जिन्हें रचन रचाया तिसे ही माहे सुमाहे कबीर कीचण वाटा गिर प्रिया

जिन तजया बाद विबाद कबीर ऐसा बीज बोए बारा मास फलंत शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत।

नेम किए ते सब रसातल जाहे। नीचे लोयन कर रहो ले साजन कट माहे। सब रस खेलो पीसो

नीचे लोयण क्यों करो, सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मैं जियो बसै, जी मैं बसै के पियो। जियो पियो बुझो नहीं, कट मैं जियो के पियो। कबीर, बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे। अर्ज उर्ज कै पच मुआ, चारो बेदो माहे।

पत बन उठाई पोटली किथे वन्या कत किज ना बुझै किज ना सुझै दुनिया गुजी पाहे साई मेरा चंगा कीता नाही ता हम्पी दंजा आहे फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक परी जे जाना सौ नंदड़ा ता थोड़ा मान करी।

अजना सुति कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहा गणी तुम क्यों रण विहाए। साहुरै टोई नाल है पेये नाही थाओ पेर वातड़ी ना पुछई तन सुहागण नाओ।

फरीदा चिंत खटोला वाण दुख गृह विषावण लेफ एओ हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरो ना उपजै सो तन जान मसान।

हंस उडर कुदरै पया लोक विडारण जाए। इंगहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए। चल चल गईयां पंखियां जिनी वसाए तल। फरीदा सर परे आपी चल सी थके कवल इकल।

फरीदा पन्नी कड़ी सवन्नवी टुटी नागर लज अजराइल फरे सता कै करना ठी अज।

कवण सुअखर कवण गुण कवण सुमणिया मंत कवण सुवे सो हों करी जित वसिया वैकंत।

कंत मत हुदी हुए अणा तन हुदे हुए नितना अणहुदे अपवंडाए को ऐसा भगत सदाए एक फिका नांगा लाए सबना मैं सच्चा तनी हिया ना कह ठाए मानक सब अमुल वे।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुरु प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो बेआपे व्यापत देखिया जगत जान कौन तेरी गत सर्ब की रखिया कर आपे और पत अबनासी बिगत आपे आप उत्पत एक है तू है एक अन नाही तुम पत अबनासी अभिगत आपे आप उत्पत एक है तू ही एक अन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है कर विचार जगत पिता है सर्ब प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जिह क्या बखान हां कै बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पर परहित पर अपर अपार पर अपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धार उपत पर लोए कै निमख तू कार आन नाय समसर उजियारो निर्मर कोट पराचित जाहे नाम लिये हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जिह क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए विस्तारे पूर रहे हो सरब में आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे आप ही तान धारण तारे कुदरत है देखारे वरन चहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसर एक जीह क्या बखान हां कै बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं उचित उचो जाने जय प्रभु तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं कवन उपमान देओ बड़े ते बडानं जान कौन तेरो पेओ अलाख्या पार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसर एक जी क्या

सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सोवै सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बोहै जिस सच संजम वर्त सच।

सवैये महले चौथे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यामो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो। गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूरजन की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अविनाशी अभिगत त्यायो। तिस भेटे दर दर न चंपै कल सहार तस गुण जंपै जंपौ गुण बिमल सुजन जन के रे अम्य नाम जा को फुरिया। इन सतगुरु सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरी। कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सरिय भर परे। छुटत प्रवाह आम्य अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया। ते पी मैं संत करह मन मज्जन पुब जिन्हों सेवा करिया। तिन भउ निवारयन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर तरे। कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सरिया भर परे। सत गुरमत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया। जाग्या मन कमल सहज प्रकाश्या भय निरंजन कर लहा। सत गुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करी। कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सरिया भर परे। अनभो नमान अकल बलागी पारस पेटिया सहज करे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे। मेटिया जन्मांत मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरी। कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सरिया भर परे। अपार भरे पायो पार दी अंतर धार्यो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् बिचार्यो। सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने। सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने। नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो। गुर रामदास कल चिरै तैं टल अमर पद पायो। संतोख सरोवर बसै अम्य रस रसन प्रकाशै मिलत शांति उपजै दुर दुरंतर नासै। सुख सागर पायो दिनत हर मग न हुटै संजम सत संतोख सील सन्नाम फुटै। सत गुर प्रमाण बिद न सिरियो जग जस तूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तैं पै अमर पद पायो। जग जितों सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुरी अमरदास जिन नाम दृढ़ायो। नव नित नाम निदान रिद सिद ता की दासी सहज स्वरूप मिलियो पुरख भेट्यो अविनाशी आद ली भगत जित लग तरे। सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल चरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो। प्रेम भगत परवाह प्रीत पुबली न हुटै सतगुर शब्द अथाह अम्य धारा रस गुटै। मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अजूनी संभवियो जगत गुर बचन तरायो। अवगत अगोचर अपर पार मन गुर शब्द वसायो। गुर रामदास कल उचरै तैं जगत उदाहरण पायो। जगति उदाहरण नम निधान भगतां पव तारण अमृत बूंद हर नाम विष की बिखै निवारण। सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइए धन ते जन बड़ भागे। ते मुक्ते भए सत गुर शब्द मन गुर परचा पायो। गुर रामदास कल उचरै तै शब्द निशान बजायो। सेज सदा सह शवन संतोख सराय चो सदा सील सनासो है। गुर शब्द समाचर यो नाम टेक संगाद बुह है।
आजुनी पल अमल सतगुर संग निवास, गुर रामदास कल चरै तो सहज सरोवर बास। गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय नवास है, जिनको गुर सो प्रसन्न दुरत दुरंतर नाशै। गुर जिनको सो प्रसन्न मानी अभिमान नवारै, जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जल तारै। पर चौ प्रमाण गुर पायो तिन सकी अथो जन्म जग, श्री गुरु शरण भज कल कब भुक्त मुक्त सब गुरु लग। सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे, अन भाओ नेजा नाम टेक जित भगत अघाणे। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे, हिरा जो गुरु रामदास तुम हूं रस जाने। जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ तरिया, सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया। अकथ कथा अमरा पुरी जिस देश उपावे, ये जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बण आवे। सतगुर नाम एक लिव मन, जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारण तरण खिन मात्र जा को दृष्ट तार, शब्द रिद विचार काम क्रोध खोवे जियो। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता, अहनस ध्यान तावे पलक न सोवे जियो। जा को देखत दरिद्र जाम नाम सो निदान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर मत मैल धोवे जियो। सतगुर नाम एक लिव मन, जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। धर्म करम पूरे सतगुरु पाई है, जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नार। जाचह शब्द सारे एक लिव लाई है, फुन जन को तेरा अपार निरपौ निरंकार। अकथ कथन हर तुझ बुझाई है, परम पूले संसार छुट हो जूनी संघार। जम क्यों डंड काल गुर मत त्याई है, मन प्राणी मुक्त विचार अहन सजप। धर्म करम पूरे सत गुर पाई है, हाँ बल बल जाओ सत गुर साचे नाम पर। कमन उपमा दयो कमन सेवा सरयो, एक मुख रसना रसो जुग जोर कर। फुन मन बच क्रम जान अंत दूजा न मान, नाम सो अपार सार दीनो गुर रिद धर। नल कव पारस परस कच कंचना, हुई चंदना सुबास जस सिमर त्यान तार। जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे, जी हो बल बल जाऊं सत गुर साचे नाम पर। राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद। तारन मनुख जन कियो प्रगाश, गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान। पंच भूत बस कीने जमत न त्रास, गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत। अगन दिखत गत चरण कमल जास, सब बिद मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न। राज जुग तख्त दियन गुर रामदास, रड जिसै तारियो तरते अर व्योम अर पावन। ते नीर सारे अवर अनल अनाद कियो, सस रेख ने सूर दिन सैल तरु फल फल दियो। सुर नर सप्त समुंदर के तारियो तर पवन जास, सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगाश। कच्चो कंचन पयो शब्द गुरु सरवणे सुनयो, बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो। लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारै, पाहण मानक करै ज्ञान गुर कहो बिचारै। काठों श्री खंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुरु चरण जिन परसिया, से पश परेत सुर नर पए।
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕੈ ਗਰਵ ਦਿਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੀ ਕਿਆ ਕਿਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਨ ਪਰ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸਚੈ ਘਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭੱਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਤਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਥੇ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ ਅਗਨ ਕੱਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕੈ ਜਿਨ

तेरे तारण तरण समर्थ कलयुग सुनत समाध शब्द जिस केरे फुन दुखन नाश सुख दायक सूरो जो धरत ध्यान बसते नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जौ हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पीयूष पिवन की वंचित सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पोमन ठोर बसो रस बासन स्यो जो दहंग दिश तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी समझलन तीर बिपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरुमुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अघन हरयो निसबासुरी एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरयो पन दास सो आस जगत त्रिगुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरयो अब रखो दास पाठ की लाज जैसी राखी इलाज भगत प्रहलाद की हरनाक्ष फारे कर आज फन द्रोपी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहु साज सुदामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसाद।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जप नाम नाम निध जप रसनी एहन सरस सत कर जानियों फुन प्रेम रंग पाइये गुर मुख है तिहाइये अन्न मार्ग तजू भजू हर ज्ञानियों बचन गुर रिद तरो पंच पू बस करो जन्म कुल युद्धरो द्वार हर मानियो ज्यों तां सब सुखी ते उत तुम बंचवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर आगम गुण जान दान हर मन तरो ध्यान अहनस करो बचन गुर रिद धर फुन गुरु जल बिमले थाह मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभउ जप प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुक्त मन भ्रम तजो नाम गुर मुख पजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइये उदर गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नगहीर मन मिलत लिव लाइय फुन गुरु परमर सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर ध्याई अमृत प्रवाह छुट कंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है नाम निर्बाण निधान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई है गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जा कि सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर गणतर तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरें ते संत हित भगत गुर गुर करें तरो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरें नारदाद सन काद हर गुर मुखें तरें एक नाम लग तजु रस अन रे दास बेनत कह नाम गुर मुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहिब सब उपर करी कृपा सत जुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल शरणाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोय गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लैण थाप जोत जगतारी लैण पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोढ़ी थर थप्यो हर का नाम अख निदप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौं जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदह जो चरण शरण सुख पावै परमानंद गुरमकई प्रतक दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरणं सतगुर गुर सेवय लख गत जांकी श्री रामदास तारण तरणं जे अमृत बचन बाणी साधु जन जपै कर बचित चाओ आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गते जीतें जम लोग पत्र जे प्राणी हर जन शिव गुरु ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछें जाकी शरणं सतगुर गुर सेवय लखत जाकी श्री रामदास तारण तारणं

सगल सृट लगबे तरो ते जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों।

रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जन माहे तरी जग और न जाहे महातम मैं अवतार उजागर आन कियो तिन के दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद्धत ते मत चुकै रे मन भेद विभेद न जान बियो पर ताशिर दे खुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पाग लार उदय तब लो प्रमते फिरते बोतायो कल कोर समुद्र में बूडत थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नामे उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेखे अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाण्यो भयो तहि सम सर सोई तरन गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहो पार भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुगावै आजा चबर सिर ढुलै नामी अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पै गयो हर बंस जगत जस संचरियो सो कमन कह श्री गुरमयो देवपुरी मैं गयो आ परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो श्री गुर तां बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै

0: पाछै भाग डरावनो आगै अगन तलाओ संसै दीरा परयो माँ को अवर न टंग नान गुरमुख छुट्टिय हर प्रीतम स्यों संग बाग मरे मन मारी है जे सतगुर दीख्या हुए आप पछाणे हर मिले बहुड़ ना मरना हुई कीचड़ हाथ न बुडई एक नदर निहाल नान गुरमुख उबरे गुर सरवर सची पाल अगन मरे जल लोड़ लो वेण गुर निद जल नाही जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागत न लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेला मेला कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए मन तन मेला अवगुणी चिंज भरी गंदी आए सरवर हंस न जाने का कुपंखी संग साकत सो ऐसी प्रीत है बूझो ज्ञानी रंग
1: संत सबा जाकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नानक नाम गुर निर्मल नाम नानका गुर तीरे दरियाओ जन्मे का फल गया गणी जा हर भगत न पाओ पैदा खाता बाद है जा मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा आलाओ नानक नाम सला तो हर हमे आबो जाओ हैन विले का नाही कणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तुर मराए जीवन नाही ताण छोटा सेती जो मरे लगी सा प्रवान जिनू लाए तिस लगे लगी ता प्रवान फिर मैं बकाम न निकलाए लाया तिन से जान पांडा तो वे कौन ज कच्चा साजया था तू पांजर लाए कूड़ा पाजया पांडा आन गराजा तिस पापसी परम जोत जगाए वाजा वापसी मनो जंदे कबूप केहा बिद न जाननी मन दे उंदे कवल दिसन खरे करूप एक कह जान केहा बूजन ते नाड़ सुगर स्वरूप एक नाना न बेद न गिया रास रास कास न जणंत एक ना सिद्ध न बुद्ध न अकल सर अखर का प्यो न लहंत नानक ते नारे असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत सौ ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म जब तसंग मावे कर्म सील तो कर के धर्म बंधन तोड़े होवे मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जोगता खतरी सोजो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाणे बीजे दान सो खतरी दर गए परवान लाभ लोभ जे कूड़ कमावे अपना कीता आपे पावे ताना तपाए तनूर ज्यो बालन हड न बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री संभाल सबनी कटी सौ वसै सैबिन घट न कोए नानक ते सुहागणी जिन गुरमुख प्रगट होए जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जाए सिर दीजे कान न की जाए नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए मन जापे मूले आया वे किथे थाए ज्ञान हीन ज्ञान पूजा अंद वर्तावा पाओ दूजा गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो न बाकी माणू कला उठे चला साधना वे ही गल है राम चुले दल मेल वै अंतर बल अधकार बंतर की सेना से भी है मंता जो जपार। सीता लै गया दै सिरो लक्ष्मण मुवो सराप नान करता करनार कर वेखे थापो थाप। मन में झूरे रामचंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्य आया कर संजोग। पूला दै न समझी तिन पा किए काम नानक वे प्रवास हो कितन मिटी राम। लाहौर शहर जैर कैर सवा पैर महला तीजा। लाहौर शहर अमृत सार सिफती दा कर महला पहला। उदो साहे क्या नसानी तोड़ना आवे अन्नी उदोसी करे ही बूठी कुड़ी रनी तमी। सती रनी करे स्यापा रोवन कुड़ी कमी जो ले वे सो देवे नाही कटे दम सहमे। पबर तू हरियावला कवला कंचन वंड कै दुखड़े साड़े उकाली होइया देवरी नानक मैं तन पंग। जाना पानी ना लहां जे सेती मेरा संग जट टे तन परवड़े चढ़े चवगन वंड। राज न कोई जीविया पहुंच न चलिया कोए ज्ञानी जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए। सर्फ है सदा सदा ए वह गए बिहाए नानक सो वाखे बिन पुछया ही लै जाए। दोष ना देहो राय नो मचले जां बुढ़ा होवे गल्ला करे कनेरियां ताने पौना खाती टोवे। पूरे का किया साके पूरा कट वध के नाही नानक गुरम वैसा जाने पूरे माई समाई श्लोक महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अभ्यागत ए न आखिया जिनके मन में परम तिनके दिते नानका तेहो जिहा धर्म अभैरण पर पाता का भी गोए। तिसका भोजन नानका बिरला पाए कोए हुआ पंडित जोत की वेद पढ़ा मुखचार। नवा खंडा विच जानिया अपने चज विचार ब्राह्मण कैरी काद कंज कान चारी का तान। फिड़क फिड़का कोड़ बदिया सदा सदा बमान पाए ते जाए विसर नानका एक नाम। सब बुद्धि जालिए करहे तत ज्ञान माथे जो तुर लिखिया सो मेट न सके कोए नानक जो लिखिया सो वरदा सो बूझे जिनु नदर होए। जिने ना विसारिया कूड़े लालच लग तंदा माया मोनी अंतर तिहना आग। जिन्ना वेल न तू बड़ी माया ठगे ठग मन मोबां चलाइए ना मिली वक्साग। आप लाए पूलिए आपे मेल मलाए नानक गुरम छुटिए जे चले सतगुर पाए। सलाह ही सलाना भी सचा सलाह नान सचा एक दर बीबा परारे आए। नानक जय जय मैं फिर हूं तै तै साचा सोए जय देखा ताई कै गुरम प्रगट होए। दोह वसारण शब्द है जे मन वसाए कोए गुर किरपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए नानक हों करते खा मुए खून लाख संख। सतगुर मिले सो उबरै सच शब्द लंख जिन्ना सतगुर एक मन सिव्या तिन जन लागू पाए गुर शब्दी हर मन वसै माया की पुख जा।

विचार हाँ मैं फिका बोलना बुझ न सका कार वाण त्रिण त्रिपवन तुझे त्याइंदा अंदन सदा विहान बिन सतगुर कने न पाया कर करथ के विचार नदर करे जे अपनी ताय आपे लें सवार नानक गुरमुख जिनि त्याया आए से प्रवान जोगना भगवी कपड़ी जोगना मैले वेस नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर के उपदेश चारे कुंडा जे पवै बेद पढ़ें जोग चार नानक साचा पेटे हर मन वसै पावे मोख द्वार नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिर चल चित मन मुख सो कर दोस्ती सुख के पुछे मित गुरमुख सो कर दोस्ती सतगुर सो लाए चित जमन मरण का मूल कटिए ता सुखो वि मित भुलिया आप समझाए सी जा को नदर करे

तत् सच्चे दरबार। तिन बहिंदियां उठदियां कदे ना विसरै, जे आ बख्शी करतार। नानक गुरमुख मिले ना विछुड़ै, जे मिले सृजनहार। गुर पीरां की चाकरी महा करड़ी सुख सार। नदर करे जिसे अपनी तसलाए हित प्यार। सतगुर की सेवै लगियां भौजल तरै संसार। मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार। नानक सतगुर मिले प्रपाइए सब दुख निवारण हार। मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए। पुत कलत कुटंब है माया मोह वधाए। दरगाह लेखा मंगिए कोई अंत ना सकी छाए। बिना में सब दुख है दुख दाई मोह माए। नानक गुरमुख नदरी आया मो माया विछुड़ सब जाए। गुरमुख हुकम मने शकेरा हुक्म ही सुख पाए। हुक्मो सेवे हुक्म आराधे हुक्मे समय समाए। हुक्म वर्तने सोच संजम मन चिंदिया फल पाए। सदा सुहागण जे हुक्म बुझे सतगुर सेवै लिवलाए। नानक कृपा करे जिने ऊपर तिन्ना हुक्मे लै मिलाए। मन मुख हुक्म ना बुझे बपुड़े नेथों में कर्म कमाए। व्रत नेम सोच संजम पूजा पाखंड परम ना जाए। अंतरों कुशुद्ध माया मोह भेदे ज्यों हस्ती शारी उड़ाए। जिन्य पाए तसै नाचे तै बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक परपंच किया तुर करतै पूर्व लिखिया कमाए। गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अंदन सेवा करत समाए। अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखै सब आए। मनिए सतगुर परम बिचारी जित मिले तिशना भुख सब जाए। हों सदा सदा बलिहारी गुरे अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए।

खोबड़ी कथाएं मिठी गलन कुमंतरिया नानक से उबरे जिन्ना पाग मथाह सुतड़े सुखी सवान जो रते शहे अपने प्रेम विशोहा तनी सौ अठे पैर लवन सुतड़े असंख माया झूठी कारणे नानक से जागन जे रसना नाम उचारणे मृग तिशना पेख फुलने उठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अराध्या नानक मंतन फब पते ते उधारण पार ब्रह्म समरथ पुरखिया पार जिसे उधारे नानका सो सिमरे सृजनहार दूजी छोड कुवाटड़ी इकस सौ चित लाए दूजे पामी नानका वहन लुढ़ंदड़ी जाए ते हटड़े बाजार सौदा करन बन जा रिया सच वखर जिन लद्या से सचड़े पासार पंथा प्रेम न जाने।

तन दारा संपत सगल जिन अपने करमान, इन मैं कछ संगी नहीं नानक साची जान। पतिते उदाहरण पै हरन हर अनाथ के नाथ, को नानक ते जानिए सदा बसत तुम साथ। तन तन जे तो कौ दियो ता स्यों नेह नकीन, कौ नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अरजे नीके थाम, कौ नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहन कोए, कौ नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए। जे

हरख सोग जा कह नहीं बैरी मीत समान, को नानक सुन रे मना मुकत ताहे तै जान। पै काहू को देत न पै मानतवान, को नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखया सगली तजी लियो पेख बैराग, को नानक सुन रे मना ते नर मात पाग। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, को नानक सुन रे मना ते कट ब्राह्मण वास। जे प्राणी हों मैं तजी करता राम पशान, को नानक वो मुकत नार ए मन साची मान। पैनासन दुर्मत हरण कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजे सफल होए ते काम। जे बागुन गोबिंद भजो करण सुनो हर नाम, को नानक सुन रे मना पर न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार, को नानक आपन तरै औरण लेते उधार। ज्यों सुपना यर पेखना ऐसे जग को जान, इन मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन मैं नानक को नारायण जे चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजै बिन सनीत, जग रचना तैसे रची को नानक सुन मीत। प्राणी कशु न चेतई मद माया के अंध, को नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहै सदा शरण राम की ले हो,

कौ नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतय मद माया के अंध। कह नानक हर भजन बिन परत ताए जम फंद। सुख में बहु संगी पए दुख में संग न कोए। कौ नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म पर मत फिरयो मिटयो न जम को त्रास। कह नानक हर भज मना निरपय पावे बास। जतन बहुत मैं कर रहो मिटयो न मन को मान। दुर्मत स्यों नानक फदयो राख ले हो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फोन तीन अवस्था जान।

नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहयो निकसत नाहिं मीत। नानक मूरत चितर ज्यों छाड़त नाहिं पीत। नर चाहत कश और की और पही। चितवत रहे उठ गौर नानक फांसी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए। को नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम। कह नानक मन सिमरते पूरण हो मैं काम। झूठ है मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान। इन मैं कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देखो बिन सैशन में मीत। जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत। जे कट सिम

ललत बिलावल गावहि अपने अपने बात, अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र, द्वितीया माल कौशक लापै संग रागनि पांचों थापै। गोंड करे अरदेव गंधारी, गंधारी सिंह ती उचारी, तनासरी ये पांचों गाई माल राग कौशक संगलाई। मारु मस्त अंग में वारा, प्रबल चांड कौशक उबारा, खोखटे पौराण दगाए अष्टमाल कौशक संगलाए। पुने आयु हिंडोल पंचनार संग अष्ट सोत, उठे तान कलोल गायन तार मिलावही, तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई। सरस अहिरी ले पर जा संगलाई पांचों वार जा, सुरमा नंद पास करे आए चंद्र बे मंगलन सुहाय। सरस बानी वाह बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा, अष्ट पुत्र में कहे सवारी पुने आई दीपक की बारी। कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप, कामोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप, कालंका कुंतले ओ रामा, कमल कुसुम चंपक के नामा।

अष्ट पुत्र श्री राके गुण कुंभ हमीर कष्टम एक राग वे गावे पांचों संग बरंगन लावे सोरठ गुण मलारी तुने पुन गावे आशा गुन गुनी।

जाय। संग रागनि तीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेते मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दोता गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरिया तू सदारो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब वे सारना, अंगीकार्यो करे तेरा कारज सब सवारना। सब ना गल्ला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदारो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रह, करता तेरे सब किश है जिस दिन सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधारू। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दियां आए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो शब्द तरु पे आरो साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित कर सपागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया।

जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दुहू ते छूट, भव जल जगत तरायण, खोजत खोजत तत बिचार्यो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण, खोजत खोजत तत बिचार्यो, दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक,

साहब जी, सा मत देह दयाल प्रभु, चित तुम्हें आराधा, नानक मंगे दान प्रभु।

परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत बड़भागे हो। कुछ जिंदगी दा कुछ समा, जिंदगी दे कुछ सवास श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरण शरण विच बैठ के बतीत कर रहे हो। सतगुर कृपा करे तुहाडा कदम कदम चलिया होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपने दर कर प्रवान करन, तुसी किरत कमाई विचों गुरु की गोलक तिल फुल पाया, सतगुरु प्रवान करे। सतगुरु अपने दरों करों तुहानू सारिआं नू तंदुरुस्तियां, चढ़दियां कलां वाला जीवन, अमृत वेले दे उद्दम तंदुरुस्तियां सतगुरु बख्शे। आओ बख्शो आगे आ, बड़े अदब नाल झुका के सीस बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु खालसा जी, मोर्चे लाने ते लवाउणे इस सिखां दे हिस्से च आए ने, ते मोर्चे लगे भी बहुत वा, एक नहीं बहुत मोर्चे लगे। पिछलिया दिनां च मैं तुहाडे सनमुख एक इतिहास रखिया सी, जे तुहानू याद होवे। जिला अमृतसर है, तहसील अजनाला, दो पिंड बसदे आ बिल्कुल नेड़े नेड़े। उस पिंड दा नौ है कुके आली ते बीका, दोवें पिंड नालों नाल वा। इन्हां दोनों पिंडां दी एक सांझी जमीन च गुरु अर्जन देव महाराज तशरीफ लैके गए। इत्थे ही मंडी सकेत दा राजा गुरु अर्जन देव जी के दर्शन किते, गद गद हो उठे। फिर मुड़ के समय बाद फिर नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज ऐसे थां ते आए। दो गुरुआं दी चरण छो धरती आ। जदों भी नौवें पातशाह आए तां उन्होंने एक बाग लवाया सी, ते गुरुद्वारे दा नौं पक्का हो गया गुरु का बाग। तुहानूं हुण चेते आ गया होवेगा, आले दुआले दियां सरदारां ने कट्ठे होके, फिर महाराजा रणजीत सिंह ने थोड़ जी जमीन इस गुरुद्वारे दे नौ ते लवाती। कोई 150 कमा जमीन है, ते प्रबंध श्रोमणी कमेटी कर रही है, क्योंकि पहला इतिहास नूं पकड़ लियो फिर तुहानूं समझ विच अगां दा आ जाणा। तुसीं इह मोर्चा मेरे कोलों सुणिया, इत्थों मैं मोर्चा नहीं तुहानूं सुणाउण लगा, मैं इहदा बदला किवें लिया। धरती मालवे दी है, इह मैं तुहानूं उत्थे निशाना ले जाना चाहना, तुहाडी पकड़ च इतिहास आ जाए भी यह गल किवें वापरी। फिर जो जमीन गुरुद्वारे दे नौ लगी, फिर लोड़ पई गुरुद्वारे सेवा संभाल दी। इन्होंने महंत नियुक्त कर दिता, उहदा नौ सी सुंदरदास। आ मेरियां मातावां भैणां बैठियां, ध्यान नाल सुनियो, बहुत कुछ तुहानू नवा लभेगा इहदे विच्चों। महंत सुंदरदास नियुक्त कीता, इहनू कई कई महीने पहले तो बहुत वधिया पंथ दे नाल होके चलदा रहा।

ना कड़ा प्रसादी देग, ना गुरु का लंगर। जैस लंगर की खातर गुरु नानक महाराज ने अपने पिता दियां झिड़कां खादियां। अज उन्हां दे गुरधामां ते लंगर ना चले तो सिखां लई बड़ी बदकिस्मती वाली गल वा। उठो, हाथ नहीं चुकना। राजा सासी कोलो कठे होके गए, राजा सासी को नाका लगा अंग्रेजां दा। एक ब्यूटी कप्तान वा DSP, ये नाका ला के खट बैठा उथे। इन्हें जाने नहीं दिता गहा, इन्हें और डांग फेरी, कुट कुट के इन्हें दा बुरा हाल कर दिता। आ सोना सरदार बटन सिंह ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ।

परम सत्कार जो गुरु प्यारी साध संग जी सतगुरां दी अपार कृपा होई है जो तुसी कुछ समा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की चरण शरण में बैठ के बतीत कर रहे हो। जिंदगी दे कुछ सवास गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों च बैठे हो। सतगुर कृपा करे अपने दरों घरों तुहानू सारियां नू तंदुरुस्तियां चढ़दियां कलां वाला जीवन अमृत वेले दे उद्दम इशनान सतगुर बख्शिश करे, नित नेम दियां दातां बख्शिश करे। जिथे गुरबाणी दा कीर्तन ज्ञानी हरजीत सिंह चमक उहनां दे पासों तुसीं सरवण कर रहे सी कुछ समा, गुर इतिहास विचारां सांझियां करन वास्ते सतगुर ने बख्शिश कीता है। आओ सारी संगत झुका के शीस बख्शो आग्या बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु खालसा जी,

0: दुख दारू सुख रोग पे आ जा सुखताम ना होई। तू करता करना मैं ना ही जाहू करी ना होई। मलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाउ। जात मैं जोत जोत मैं जाता अगल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिवत सवा लियो जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा।
1: सुंदर रागा सा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।